0: क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया जिनके पांव मुल्क में ऐसे जमा दिए थे कि तुम्हारे पांव भी ऐसे नहीं जमाए, और उन पर आसमान से लगातार मेह बरसाया और नहरें बना दी जो उनके मकानों के नीचे बह रही थीं, फिर उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया और उनके बाद और उम्मतें पैदा कर दी।
1: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه

0: उनसे पूछो कि आसमान और जमीन में जो कुछ है किसका है, कह दो खुदा का, उसने अपनी जाते पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया है, वो तुम सबको कयामत के दिन जिसमें कुछ भी शक नहीं जरूर जमा करेगा। जिन लोगों ने अपने कई नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते।
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: और जो मखलूक रात और दिन में बसती है सब उसी की है और वो सुनता जानता है।
1: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: कहो क्या मैं खुदा को छोड़कर किसी और को मददगार बनाऊं कि वही तो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है और वही सबको खाना देता है और खुद किसी से खाना नहीं लेता। ये भी कह दो कि मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहले इस्लाम लाने वाला हूँ, और ये कि तुम ए पैगंबर मुशरिकों में न होना।
1: قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: ये भी कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूँ तो मुझे बड़े दिन के अजाब का खौफ है। जिस शख्स से उस रोज अजाब टाल दिया गया उस पर खुदा ने बड़ी मेहरबानी फरमाई और ये खुली कामयाबी है।

0: और अगर खुदा तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो उसके सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं, वो हर चीज पर कादिर है।
1: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
0: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے۔
1: قل اي شيء اكبر شهر

तो उनसे कुछ उज्र न बन पड़ेगा और बजुज इसके कुछ चारा न होगा कि कहें खुदा की कसम जो हमारा परवरदिगार है हम शरीक नहीं बनाते थे।

0: देखो उन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बोला, और जो कुछ ये इफ्तरा किया करते थे सब उनसे जाता रहा।
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ

0: काश तुम उनको उस वक्त देखो जब ये दोजक के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं, ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकजीब न करें और मोमिन हो जाएं।
1: बल बदा लहुम मा कानू युखफून मिन कब्ल वलव रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून।
0: हाँ, ये जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज उन पर जाहिर हो गया है, और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाएं, तो जिन कामों से उनको मना किया गया था वही फिर करने लगे। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं।
1: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين।
0: और कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की जिंदगी है बस यही जिंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे।
1: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون।
0: और काश तुम उनको उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे और वो फरमाएगा क्या ये दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं, तो कहेंगे क्यों नहीं, परवरदिगार की कसम बिल्कुल बरहक है। खुदा फरमाएगा अब कुफ के बदले जो दुनिया में करते थे अजाब के मजे चखो।

0: जिन लोगों ने खुदा के रूबरू खड़े होने को झूठ समझा वो घाटे में आ गए, यहाँ तक कि जब उन पर कयामत नागहां आ मौजूद होगी तो बोल उठेंगे कि हाय उस तकसीर पर अफसोस है जो हमने कयामत के बारे में की, और वो अपने आमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। देखो जो बोझ ये उठा रहे हैं बहुत बुरा है।
1: वमल हयातु दुनिया इल्ला लाइब वलहु वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीन यत्तकून अफला तअक़िलून।
0: और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और मशगला है, और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का घर है, यानी उनके लिए जो खुदा से डरते हैं, क्या तुम समझते नहीं।
1: قَدْ نَعْلَمُ إِنَّ

0: हमको मालूम है कि इन काफिरों की बातें तुम्हें रंज पहुंचाती हैं, मगर ये तुम्हारी तकजीब नहीं करते बल्कि जालिम खुदा की आयतों से इनकार करते हैं।
1: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا

0: और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, उनसे कुछ काम न रखो। हाँ, इस कुरान के जरिए से नसीहत करते रहो ताकि कयामत के दिन कोई अपने आमाल की सजा में हलाकत में न डाला जाए। उस रोज खुदा के सिवा ना तो कोई उसका दोस्त होगा और न सिफारिश करने वाला, और अगर वो हर चीज जो रुए जमीन पर है बतौर मुआवजा देना चाहे तो वो उससे कबूल न हो। यही लोग हैं कि अपने आमाल के बवाल में हलाकत में डाले गए, उनके लिए पीने को खौलता हुआ पानी और दुख देने वाला अजाब है, इसलिए कि कुफ्र करते थे।
1: قُلْ أَنَا

0: यानी जब रात ने उनको पर्दे तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर पड़ा। कहने लगे, ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं।
1: फलम

0: फिर जब चांद को देखा कि चमक रहा है तो कहने लगे, ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं।
1: فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ

फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे, मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, लोगो, जिन चीजों को तुम खुदा का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ।

0: ये वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म शरीयत और नबूवत अता फरमाई थी। अगर ये कुफार इन बातों से इनकार करें तो हमने उन पर ईमान लाने के लिए ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं कि वो उनसे कभी इनकार करने वाले नहीं।
1: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين।
0: ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने हिदायत दी थी, तो तुम उन्हीं की हिदायत की पैरवी करो। कह दो कि मैं तुमसे इस कुरान का सिला नहीं मांगता, ये तो जहान के लोगों के लिए महज नसीहत है।
1: वो

0: और वही तो है जो आसमान से मेह बरसाता है, फिर हम ही जो मेह बरसाते हैं उससे हर तरह की रोईदगी उगाते हैं, फिर उसमें से सब्ज सब्ज कोंपले निकालते हैं और उन कोंपलों में से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के गाभे में से लटकते हुए गुच्छे और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते। ये चीजें जब फलती हैं तो इनके फलों पर और जब पकती हैं तो इनके पकने पर नजर करो। इनमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं।
1: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون।
0: और उन लोगों ने जिनों को खुदा का शरीक ठहराया हालांकि उनको उसी ने पैदा किया, और बेसमझे झूठ बोहतान उसके लिए बेटे और बेटियां बना खड़ी की, वो इन बातों से जो उसकी निस्बत बयान करते हैं पाक है और उसकी शान इनसे बुलंद है।
1: बदीउ السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم।
0: वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, उसके औलाद कहां से हो जबकि उसकी बीवी ही नहीं, और उसने हर चीज को पैदा किया है और वो हर चीज से बाखबर है।

0: और हम उनके दिलों और आंखों को उलट देंगे, तो जैसे ये इस कुरान पर पहली दफा ईमान नहीं लाए वैसे फिर न लाएंगे, और उनको छोड़ देंगे कि अपनी सरकशी में बहकते रहें।
1: रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए FM 92.6।

0: मारा और वो दम तोड़ गई। ये इस्लाम में पहली शहीदा हैं। हजरत अमार रजी अल्लाह तआला अन्हु पर सख्ती का सिलसिला जारी रहा। इन्हें कभी धूप में तपाया जाता तो कभी इनके सीने पर सुर्ख पत्थर रख दिया जाता और कभी पानी में डुबोया जाता। इनसे मुशरिकीन कहते थे कि जब तक तुम मोहम्मद को गाली ना दोगे या लात व उज्जा के बारे में कलमा खैर ना कहोगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। हज़रत अमार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मजबूरन इनकी बात मान ली। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास रोते और माजरत करते हुए तशरीफ़ लाए। इस पर यह आयत नाजिल हुई, जिसने अल्लाह पर ईमान लाने के बाद कुफ्र किया, इस पर अल्लाह का गज़ब और आज़ाब अज़ीम है। लेकिन जिसे मजबूर किया जाए और इसका दिल ईमान पर मुतमइन हो, इस पर कोई गिरफ्त नहीं। हज़रत फुकिया, जिनका नाम अफलाह था, बनी अब्दुलदार के ग़ुलाम थे। इनके ये मालकान इनका पांव रस्सी से बांध कर इन्हें ज़मीन पर घसीटते थे। हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, खुज़ा की एक औरत उम्मे अनमार के ग़ुलाम थे। मुशरिकीन इन्हें तरह तरह की सज़ाएँ देते थे। इनके सर के बाल नोचते थे और सख्ती से गर्दन मरोड़ते थे। इन्हें कई बार दहकते अंगारों पर लिटा कर ऊपर से पत्थर रख दिया गया ताकि वो उठ ना सकें। ज़िनेरा और नहदिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इनकी साजादी और उम्मे अबीस, ये सब लोंडियाँ थीं। इन्होंने इस्लाम कबूल किया और मुशरिकीन के हाथों इस तरह संगीन सजाओं से दोचार हुई, जिनके चंद नमूने जिक्र किए जा चुके हैं। कबीला बनी अदी के खानवदे बनी मोमिल की एक लोंडी मुसलमान हुई तो इन्हें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, जो बनी अदी से ताल्लुक़ रखते थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इस कदर मारते थे कि मारते मारते खुद थक जाते थे और इसके बाद कहते थे कि मैंने तुझे किसी मुरव्वत की वजह से नहीं बल्कि महज थक जाने की वजह से छोड़ा है। आखिरकार अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल और आमिर बिन फुहीरा की तरह इन लोंडियों को भी ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। मुशरिकीन ने सज़ा की एक शक्ल ये भी इख्तियार की थी कि बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऊँट और गाय की कच्ची खाल में लपेट कर धूप में डाल देते थे। दर हकीकत अल्लाह की राह में जुल्म और जोर का निशाना बनने वालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है और बड़ी तकलीफ दे भी। हालत ये थी कि जिस किसी के मुसलमान होने का पता चल जाता था, मुशरिकीन इसके दर पे आज़ार हो जाते थे। दारे अरकम। इन सितम रानियों के मुकाबिल हिकमत का तकाजा ये था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मुसलमानों को कौलन और अमलन दोनों तरह इस्लाम के इजहार से रोक दें और इनके साथ खुफिया तरीके पर इकट्ठे हों, क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इनके साथ खुल्लम खुल्ला इकट्ठे होते तो मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के तज़किया नफ्स और तालीम किताब व हिकमत के काम में यकीनन रुकावट डालते थे और इसके नतीजे में फरीकैन के दरमियान तसादुम होता, बल्कि अमलन नबूवत में हो भी चुका था। जिसकी तफसील ये है कि सहाबा कराम घाटियों में इकट्ठे होकर नमाज पढ़ा करते थे। एक बार कफ्फार कुरैश के कुछ लोगों ने देख लिया तो गालम गलोच और लड़ाई झगड़े पर उतर आए। जवाबन हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को ऐसी ज़र्ब लगाई कि इसका खून बह पड़ा और ये पहला खून था जो इस्लाम में बहाया गया। ये वाज़े ही है कि अगर इस तरह का टकराव बार बार होता और तूल पकड़ जाता तो मुसलमानों के खात्मे की नौबत आ सकती थी। लिहाजा हिकमत का तकाजा यही था कि काम पसे पर्दा किया जाए। चुनाचे आम सहाबाए कराम अपना इस्लाम, अपनी इबादत, अपनी तबलीग और अपने बाहमी इस्तेमाल सब कुछ पसे पर्दा करते थे। अलबत्ता रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का काम भी मुशरिकीन के रूबरू खुल्लम खुल्ला अंजाम देते थे और इबादत का काम भी। कोई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को इससे रोक नहीं सकती थी। ताहम आप भी मुसलमानों के साथ खुद उनकी मसलहत के पेश नज़र खुफिया तौर से जमा होते थे। इधर अरकम बिन अबिल अरकम मखसूमी का मकान कोहे सफ़ा पर सरकशों की निगाहों और इनकी मजलिसों से दूर अलग थलग वाक़ था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने पाँचवीं सना नबूवत से इसी मकान को अपनी दावत और मुसलमानों के साथ اپنے اجتماع کا مرکز بنا لیا۔
1: سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद।
2: अपने इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। पहली हिजरत हबशा, जोर व सितम का मज़कूरा सिलसिला नबूवत के चौथे साल के दरमियान या आखिर में शुरू हुआ था और इब्तदान मामूली था, मगर दिन ब दिन और माह ब माह बढ़ता गया, यहाँ तक कि नबूवत के पांचवी साल का वस्त आते आते अपने शबाब को पहुँच गया, हत्ता कि मुसलमानों के लिए मक्का में रहना दो भर हो गया और इन्हें इन पहम सितम रानियों से निजात की तदबीर सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। इन्हीं संगीन और तारीख हालात में सूरह कहफ नाजिल हुई। ये असलन तो मुशरिकीन के पेश करदा सवालात के जवाब में थी, लेकिन इसमें जो तीन वाकयात बयान किए गए हैं, इन वाकयात में अल्लाह ताला की तरफ से अपने मोमिन बंदों के लिए मुस्तकबिल के बारे में नहायत बलीग इशारात थे। चुनाचे असहाबे कहफ के वाक्य में ये दर्स मौजूद है कि जब दीन व ईमान खतरे में हो तो कुफ्र व जुल्म के मराकज से हिजरत के लिए तन ब तकदीर निकल पड़ जाना चाहिए। इरशाद है, और जब तुम इनसे और अल्लाह के सिवा इनके दूसरे माबूदों से अलग हो गए तो गार में पनाहगीर हो जाओ, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम के लिए तुम्हारी सहूलत की चीज़ तुम्हें मुहैया करेगा। मूसा और खजर अलैहिस्सलाम के वाक़े से ये बात साबित होती है कि नताइज हमेशा ज़ाहिरी हालात के मुताबिक नहीं होते, बल्कि बसा औकात ज़ाहिरी हालात के बिल्कुल बरअक्स होते हैं। लिहाजा इस वाक़े में इस बात की तरफ लतीफ़ इशारा पनाह है कि मुसलमानों के खिलाफ इस वक्त जो जुल्म व तशद्दुद बरपा है, इसके नताइज बिल्कुल बरअक्स निकलेंगे, और ये सरकश मुशरिकीन अगर ईमान ना लाए तो आइंदा इन्हीं मकहूर व मजबूर मुसलमानों के सामने सरनिगूं होकर अपनी किस्मत के फैसले के लिए पेश होंगे। ज़ुल्करनैन के वाक़े में चंद खास बातों की तरफ इशारा है। नंबर एक, ये कि ज़मीन अल्लाह की है और वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बनाता है। नंबर दो, ये कि फलाह कामरानी ईमान ही की राह में है, कुफर की राह में नहीं। नंबर तीन, ये कि अल्लाह ताला रह कर अपने बंदों में से ऐसे अफराद खड़े करता रहता है जो मजहूर व मकहूर इंसानों को इस दौर के याजूज व माजूज से निजात दिलाते हैं। नंबर चार, ये कि अल्लाह के सौले बंदे ही ज़मीन की वरासत के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। फिर सूरह कहफ के बाद सूरह ज़ुमर का नज़ूल हुआ और इसमें हिजरत की तरफ इशारा किया गया और बताया गया कि अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं है। इरशाद है, जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छाई की इनके लिए अच्छाई है और अल्लाह की ज़मीन कुशादा है, सब्र करने वालों को इनका अजर बिला हिसाब दिया जाएगा। इधर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को मालूम था कि असहमा नजाशी शाह हब्श एक आदिल बादशाह है, वहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो फितनों से अपने दीन की हिफाजत के लिए हबशा हिजरत कर जाएं। इसके बाद एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 5 रजब 90 में सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु के पहले गरों ने हबशा की जानिब हिजरत की। इस गरों में 12 मर्द और 4 औरतें थीं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु इनके अमीर थे और इनके हमराह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की साजादी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि हजरत इब्राहिम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की। ये लोग रात की तारीकी में चुपके से निकल कर अपनी नई मंजिल की जानिब रवाना हुए। राजदारी का मकसद ये था कि कुरैश को इल्म ना हो सके। रुख बहरा अहमर की बंदरगाह शोया की जानिब था। खुशकिस्मती से वहाँ 2 तजारती कश्तियाँ मौजूद थी जो इन्हें अपने दामन आफियत में लेकर समुंदर पार हबशा चली गई। कुरैश को किसी कदर बाद में इनकी रवानगी का इल्म हो सका, ताहम इन्होंने पीछा किया और साहिल तक पहुँचे, लेकिन सहाबा कराम आगे जा चुके थे इसलिए नामुराद वापस आए। इधर मुसलमानों ने हबशा पहुंचकर बड़े चैन का सांस लिया। اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، کیونکہ ان کا دائمی وطیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا، ارشاد ہے، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو اور ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اس سورہ کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رنائی اور دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، سب کے سب گوش بر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کے اواخر میں دل ہلا دینے والی آیات کی تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا، تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رنائی اور جلال نے متکبرین کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی تک کا زور لگا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھاڑ شروع کی، تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ افترا درازی کی اور یہ جھوٹ گڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ بلند پایا دیو ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گڑتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افترا پردازی کرتے رہتے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گڑتے۔ سامعین، یہ تھی ہماری آج کی نشست، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی نشست میں۔ سامعین، اپنے اس سلسلے کو مزید آگے ہم اگلی نشست میں بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB की दुनिया.

0: एंड लुकिंग एट द रूम के चेयरमैन का अच्छा कमरा कैसे होता है. एंड बिहाइंड सर देर वॉज अ बोर्ड जिसमें सारे ना चेयरमैन, पिछले लास्ट आई थिंक देर लाइक 80 नेम्स सारे चेयरमैन का वहाँ पे जिक्र था.
1: ऑनर बोर्ड.
0: यस यस. और मैं उसमें थी कि अच्छा वी आर हम, क्योंकि जिस ज़माने में गई थी वहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद थोड़ी हमारी ज़्यादा हो गई थी. एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि कोई भी फीमेल का नाम नहीं है. एंड देन दिस ईयर 2025 डॉक्टर गजाला इज़ द फर्स्ट फीमेल चेयरमैन, फीमेल डायरेक्टर. सो दैट्स क्वाइट अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज वेल, बीइंग अ वुमन.
1: ये मैं एक छोटा सा इजाफा भी कर दूं कि डॉक्टर गजाला पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली रेगुलर पीएचडी भी हैं.
0: अच्छा,
1: ये एजाज भी अल्लाह ने मुझे दिया. पंजाब यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की पहली रेगुलर पीएचडी भी डॉक्टर गजाला ही हैं.
2: बहुत शुक्रिया सर. आप इसी तरह शमा से शमा जलाते रहें और इल्म के खजाने को इस तरह निछावर करते रहें. अभी हम आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे. वो सवाल ये होगा आपसे कि आप क्या समझते हैं कि बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में यूसीपी का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट नए आने वाले स्टूडेंट्स को क्या ऐसी चीज़ें ऑफर कर रहा है जिसकी बुनियाद पे स्टूडेंट्स का जो पहली प्रायोरिटी हो वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट यूसीपी हो और कोई और यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ना हो. मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा.
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया. इसमें सबसे पहले तो मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूंगा कि यूसीपी में 13 स्कॉलरशिप डिफरेंट लेवल पे दिए जा रहे हैं जिसमें मेरिट है, नीडी है, टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है, किनशिप है. पंजाब कॉलेज की तरफ से कोई आया तो वह टैलेंट बेस्ड तो 100% ये स्कॉलरशिप दिया जा रहा है. बहुत सारे स्कॉलरशिप अपनी जगह हैं. और दूसरा, हमने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एक तो डिग्री का नाम बदल दिया है, वो इन प्रोसेस है, इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा, बीएस मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस. और दूसरा हम ये कर रहे हैं कि आखिरी सेमेस्टर में जाके स्टूडेंट्स की कुछ थोड़ी सी टीचिंग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं ताकि जब ये यहाँ से जाएं तो यूसीपी का नाम रोशन करें, ना कि यूसीपी को बदनाम करें. तो वो उसके लिए हमने बाकायदा, हमारे टीचर्स ने ट्रेनिंग शुरू की थी और उनको हम कंटिन्यू करेंगे. और अभी हाल ही में हमें एक और शॉर्ट कोर्स नज़र आ रहा है विच इज़ डेटा विजुअलाइजेशन. तो डेटा विजुअलाइजेशन भी हम समर में अपने बच्चों को, जो बीएस डेटा साइंस वाले तो पढ़ेंगे, वो तो जब ऑफर होगा उस वक्त पढ़ेंगे. तो हम ये चाह रहे हैं कि जो करंट सेमेस्टर में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ये डेटा विजुअलाइजेशन की थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए ताकि इनके पास भी एक स्किल आ जाए और ये भी टीचिंग के अलावा भी किसी और जगह भी ये जा सकें.
2: मिस सबा नईम, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि आप मुझे ये बताइए कि आपने UCP के माहौल को एज अ होल कैसे पाया?
0: सर, UCP इज़ नाउ लाइक अ सेकेंड होम टू मी. और यहाँ पे एक बहुत ही अपनायत का एहसास होता है. और इट्स और दूसरी बात यह कि इट्स अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट जिसमें हर चीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, लाइक अ सेकेंड होम. जैसे मैंने बताया कि 8 साल हो गए हैं. तो
2: दैट्स वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव फीडबैक. नॉर्मली जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले लोग होते हैं अपने माहौल से इस तरह मुतमईन और शादा नहीं होते जिस तरह आपने इजहार किया. बहुत अच्छी बात है क्योंकि जितना उस्ताद कलबी तौर पे और जहनी तौर पे आसूदा होगा, मुतमईन होगा, उतना ही बेहतर डिलीवर कर सकेगा. तो डॉक्टर सिद्दीकी साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, फिर हम आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे. वही सवाल मैं बाद में मिस सबा नईम से भी करूँगा. वो सवाल ये है कि आप आने वाले तलबा को जो कि इरादा रखते हैं यूसीपी में आने का, क्या पैगाम देना चाहेंगे?
1: पैगाम तो आजकल स्टूडेंट्स का थोड़ी सी साइकी भी बन गई है. वो समझते हैं कि जी उस एरिया में जाया जाए जहाँ ज़्यादा पैसा हो और शॉर्टकट हो. मैंने FIT में पढ़ाया और वहाँ मैंने ये देखा कि तीसरे चौथे सेमेस्टर से ही वो कोई कॉल सेंटर में जा रहा है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस में जा रहा है. तो मैं उनसे ये कहता था कि आपने फिर ये 8 सेमेस्टर की डिग्री क्यों ज्वाइन की? अगर आपने यही शॉर्टकट लेना था तो वैसे ही चले जाते. और इतनी मुश्किल में आप डाल रहे हैं. और अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फिर आप बेशक जॉब करें. और जिनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है वो भी देखा था कि जॉब करें. नतीजा ये है कि डिग्री बहुत ज़्यादा मुतासर होती है उससे और मैथमेटिक्स की तरफ भी रुझान और कम हो जाता है उनका. तो आने वाले बच्चों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि

0: अपने अपने में पोटेंशियल देखें कि आपका पोटेंशियल क्या है, ये ना देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है, पैसा कहाँ से मिलेगा। अगर आपका जहाँ भी आपका पोटेंशियल अच्छा होगा वहीं आप एक्सेल कर सकते हैं, अपने आप को मनवा सकते हैं। तो अपने आप को ढूंढें, अपने आप को एक्सप्लोर करें। ये बहुत कमी है हमारे स्टूडेंट्स में, उन्हें यही नहीं पता कि हमें अल्लाह ने क्या खूबी दी है। सारी खूबियाँ हर इंसान में नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई खूबी हर इंसान में अल्लाह ने ज़रूर दी होती है, बस उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जो ही एक्सप्लोर कर लेंगे तो आप फिर खुश दिली के साथ, और दो इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी, 8 semesters बहुत ज़्यादा होते हैं, और 8 semesters में सर को जाने की फुर्सत नहीं मिलती, और आप गमी खुशी को भी आपको कुर्बान करना पड़ जाता है। तो ये तो इस जज्बे के साथ आए, और हमारे टीचर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी जा जा के मिलता रहता हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है। हम पूरी कोशिश करें स्टूडेंट्स को कि अगर वो अब आ ही गए हैं, डिसीजन कर ही लिया है, तो अब इसको निभाएं। कायदा ने भी ये कहा था कि या तो जो डिसीजन कर लें तो फिर उस पर कायम हो जाएं,
1: चट्टान की तरह जी कायम डट जाएं। मिस सबा नहीं, मैं आपसे पूछूंगा कि आइंदा आने वाले सेमेस्टर में आपके डिपार्टमेंट में क्या ऐसे प्लान्स हैं जो कि ना सिर्फ फैकल्टी को उनके जो है नशोनुमा को बढ़ाएं, बल्कि जो मुस्तकबिल में जहां आपके बच्चों ने जाना है, एम्प्लॉयज के साथ, इंडस्ट्री के साथ कैसे आप डव टेल करेंगे, कौन से सेमिनार्स हैं, कौन से कॉन्फ्रेंसेस हैं, कौन से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जो आपके पास है? यही सवाल बाद में मैं शायद से देखिए साहब से भी करूँगा। मिस सबा नहीं
2: जी सर, हमारे यहाँ पे UCB का एक ये एनवायरनमेंट है कि कोई ना कोई एक्टिविटी जो है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी हमेशा मौजूद रहती है। और अगर पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हवाले से देखा जाए तो वी कंडक्ट डिफरेंट वर्कशॉप्स, और इसके अलावा हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे पोस्टर कॉम्पिटिशन है। एंड रिसेंटली आई ऑल्सो लाइक टू ऐड कि हमारा हर एनुअली एक साइंस एंड इंजीनियरिंग फेस्टिवल भी होता है, जिसमें हम साइंसेस को प्रमोट करते हैं। एंड बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर, तो हम मैथ्स के डिपार्टमेंट मैथ्स की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। सो उसमें हम डिफरेंट इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, विच वी इंस्टिल द इंटरेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स टू द यंग स्टूडेंट्स, कि मैथ्स जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इट्स नोन एज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस, और अभी तक उसकी रेलिवेंस ख़त्म नहीं हो सकती। चाहे वो आप डिफरेंट प्रोग्राम्स अब IT के आ रहे हैं, लेकिन मैथ्स वालों की जो ज़रूरत है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और शायद यही वजह है कि वी हैव बीन वी आर द लाइक बिगेस्ट फैकल्टी अक्रॉस UCP, और हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को भी कैटर कर रहे हैं। सो इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, हमेशा पूरे साल में कुछ ना कुछ ऐसे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। समर्स में हमारी वर्कशॉप टीचिंग की भी होती हैं, एंड देन रिसर्च के हवाले से भी होती हैं। सो यस,
1: शाहिद सिद्दीकी साहब, मुख्तसरन तकरीबन 1 मिनट आपके पास है, आप बताइए कि आपके पास क्या प्लान्स हैं आइंदा आने वाले सेमेस्टर में इस्तेमाल के लिए, और स्टूडेंट्स को मज़ीद एक्सपोज करने के लिए बाहर की दुनिया से।
0: जी, एक तो मैंने पहले ही स्टूडेंट्स के हवाले से बता दिया कि हमारा प्लान है समर में हम डेटा विजुअलाइजेशन ऑफर करने जा रहे हैं। उसके अलावा हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आउटसाइड UCP, मैंने ये आइडिया दिया था प्रोफेसर साहब को, तो वो कह रहे हैं कम अप विद योर फुल प्लान। तो हम ये चाह रहे हैं कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाया जाए। मैथमेटिक्स एक बहुत टफ सब्जेक्ट समझा जाता है, और हमारे एक पुराने डीन थे, वो ये कहते थे कि रिग्रेस मैथमेटिक्स आप पढ़ाते हैं, इसको लाइट बनाएं। तो असल में यही हमारी कमी है कि हम इसको सही तरह से बता नहीं पा रहे होते। हम उसको लाइट मोड में अगर बताएंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा बच्चा। और यहाँ फिर मैथमेटिक्स की जहाँ इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, बार बार हम कहते हैं जी कंप्यूटर साइंस ने ये तरक्की कर ली। मैं कहता हूँ कि उसके पीछे सारा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स पुश करता है टेक्नोलॉजी को, और टेक्नोलॉजी पुश करती है मैथमेटिक्स को। आज मैंने जियोजेब्रा सीखा हुआ है, तो आई कैन डेवलप न्यू मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन जियोजेब्रा, वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अभी जो मैं एक छोटी सी मिसाल के लिए थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा, वो ये है, जब सिटी स्कैन आप सुनते हैं, ये बहुत पहले 89 में ये प्रॉब्लम मैथमेटिशियन को दिया गया था कि अगर किसी पेशेंट के में कोई ट्यूमर है, हमने उसका वॉल्यूम निकाल लें, हमारे पास सिर्फ उसके क्रॉस सेक्शन पे डेटा पता है। तो वो मैथमेटिक्स तो डेवलप कर लिया गया, टेक्नोलॉजी पीछे रह गई और उसको दिखाया नहीं जा सका था। तो वही सीटी स्कैन आज वो सॉफ्टवेयर की शक्ल में, और जाहिर है कि टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई, तो इसकी जो स्टार्ट था, उसका जो वॉल्यूम निकालने का तरीका था, उसका पेपर आज भी डंडी यूनिवर्सिटी का मौजूद है, वो मैथमेटिशियन थे। थैंक यू वेरी मच
1: डॉक्टर सिद्दीकी साहब। ایک میرا ذاتی سوال تفنن طبع کے لیے وہ یہ ہے کہ فزکس والے نیوٹن کو اپنا کہتے ہیں, میتھمیٹکس والے بھی نیوٹن کو اپنا کہتے ہیں. آپ آج اس قضیے کا فیصلہ کر دیجئے کہ بینگ اے فزسسٹ میں نیوٹن کو اپنا کہوں یا میتھمیٹیشین بینگ اے میتھمیٹیشین آپ نیوٹن کو اپنے ڈومین میں کنسیڈر کرتے ہیں.
0: یہ میں یہ کہوں گا کہ میتھمیٹکس اور فزکس ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور وہ باپ ہیں سائنس.
2: آپ بھی ایکچولی ہمارے ہیں.
0: تو یہ چونکہ ایریا اتنا بڑا ہو گیا, آپ کو بہت سارے میتھمیٹیشین فلاسفر ملیں گے.
1: بالکل ٹھیک,
0: وہ فلاسفر تھے اور وہ میتھمیٹیشین بھی تھے.
1: ایسے ایسے ایسے
0: تو یہ ایک ہی ہیں, ہم سب ایک ہی ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں.
1: ایسے جی, ایسے ساری یہ ایک دوسرے کے سپورٹیو سائنسز ہیں, سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے, ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلتے ہیں. سو سامعین, آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یقیناً آپ کو پسند آئے گا, ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے ہفتے اسی وقت ان شاء اللہ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان
0: زندہ باد.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of Formation.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Dunia.

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: वेलकम बैक टू FM 92.6 UCP की दुनिया और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद नो. आज हम गुफ्तगु कर रहे थे सेल्फ अवेयरनेस क्या है, खुद की आगाही क्या है और वो कौन से टूल्स हैं जो हमें मदद करते हैं अपनी ज़ात को पहचानने के बारे में और अपने आप को पहचानने के बारे में कि क्यों हम पॉजिटिव सोचते हैं या क्यों हम नेगेटिव सोचते हैं या हम जो जज्बात दुनिया के सामने रखते हैं उनके पीछे की वजह क्या है, क्यों हमारे अंदर ये जज्बात बचपन से हैं. तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि वो टूल्स कौन से हैं. तो ज़ाहिरी तौर पे अगर आप अपनी ज़ात को पहचानना चाहते हैं तो मैंने जो इस प्रोग्राम के बारे में रिसर्च की और मैं हैरान कन हूँ इस बात पे कि जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको अपनी ज़ात के बारे में बता सकती है वो आपकी पर्सनल डायरी है. तो यकीन माने अगर आप अभी तक पर्सनल डायरी नहीं है आपके पास और आप अपनी ज़ात के बारे में नहीं लिखते कि आपका दिन कैसा गुजरा, आपके जज्बात कैसे थे पूरे दिन, आपने कैसे इंटरेक्ट किया लोगों से और आप कैसा सोच रहे हैं दूसरों के बारे में, अगर आप इसको नोट डाउन नहीं करते डेली बेसिस पे तो यकीन माने आप सेल्फ अवेयर नहीं हैं. राइटर्स कहते हैं, अरस्तू ने कहा था कि ये आपकी खुद आगाही सबसे पहले आपको अपनी ज़ात के बारे में हर शाम को बैठ के सोचना चाहिए कि आप क्या हो. तो ये आज के मॉडर्न एरा में उसको हम पर्सनल डायरी कह सकते हैं कि हमें पर्सनल डायरी क्यों बनानी चाहिए, क्यों कि आज मुझे फिक्र किस बात पर हुआ, मतलब मुझे किस बात का डर था, किस बात की फिक्र थी, क्यों आज मैंने ये सोचा. अगर मैंने किसी इंसान किसी शख्स के बारे में कुछ सोचा है तो वो मैंने क्यों सोचा. आज के इस तवील रेडियो प्रोग्राम में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हम एक दिन गुजारते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने घर वालों से मिलते हैं, हम अगर स्कूल के तालिब इल्म हैं, कॉलेज के तालिब इल्म हैं, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं या हम ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, किसी भी तबके फ़िक्र से हैं, हम किसी भी प्रोफेशनल स्टाइल ऑफ लाइफ से हैं, तो हम वहाँ पर वैसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं जैसा हम हमारी ज़ात के अंदर फिक्स्ड हुआ है, हम उसको क्यों नहीं बदल सकते, क्यों हम अपने इमोशंस को ताबे लाते हुए हर फैसले को करते हैं, हम हर फैसले को अपने दिमाग के मुताबिक क्यों नहीं करते, अपने जज्बात को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते. सो इसी हवाले से हम इस आज की इस नशिस्त में बात करेंगे. सो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी में कि डायरी जो है वो हमें ये बताती है कि आज के दिन में मैंने मेरी ज़ात ने क्या गलत किया है और आज के दिन में माजी से क्या मैंने मुख्तलिफ किया है, क्या ऐसा मैंने किया है कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था या क्या मुझे ऐसा करना चाहिए जो मेरी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर कर सकता है. अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को, अपने एहसासात को इस चीज़ पर जज करें कि क्या चीज़ है जो आपको बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है. सो आज के इस रेडियो प्रोग्राम में हम इस चीज़ पर गौर करेंगे कि ये डायरी लिखना क्यों ज़रूरी है. देखिए डायरी वो वाहिद चीज़ है जो आपको आपकी अपनी परसेप्शन एक दिन में 24 घंटे में बता देती है. फॉर एग्जांपल इशा के बाद बैठ के मैं अपनी पर्सनल डायरी लिखता हूँ तो मैं ये जानूंगा कि मैंने आज के पूरे दिन में रेडियो में जो वक्त गुजारा वहाँ मैंने कैसा वक्त गुजारा, वहाँ मैंने लोगों से जो ट्रीट किया कैसा ट्रीट किया, मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने प्रोडक्शन ट्रैक्स में या किसी चैनल में अगर मैं कोई प्रोजेक्ट करने गया हूँ तो वहाँ जब मैंने कम्युनिकेट किया अपने सीनियर्स के साथ तो मैंने कैसा कम्युनिकेट किया, मैं उनके बारे में क्या जज कर रहा था, क्या परसीव कर रहा था, या मैं यूनिवर्सिटी में क्लास लेने गया तो वहाँ पर मैंने क्या चीज़ समझी, जब मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया क्या चीज़ गलत मेरी इंटरेक्शन थी. सो डायरी वो वाहिद चीज़ है जो आपको ये चीज़ सिखाती है कि आपने पूरे दिन में क्या ठीक क्या गलत किया, किन जज्बात को आप कंट्रोल ना कर पाए, किन ख्यालात को आपको और ज़्यादा पॉजिटिव सोचना चाहिए था. सो आज के इस रेडियो प्रोग्राम में खुद आगाही के इस सिलसिले में हम ये जानेंगे कि हमारा अपनी ज़ात को पहचानने के बाद उसको बेहतरी की तरफ कैसे ला सकते हैं और बेहतरी की तरफ लाना कितना ज़रूरी है. सो अगर हम बात करें कि इसके बाद कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमें मदद कर सकते हैं अपनी ज़ात को पहचानने के बारे में, वो है जी दूसरों से फीडबैक लेना. ये नहायत ज़रूरी है कि आप दूसरों से अपनी ज़ात के बारे में फीडबैक लें. आप इस चीज़ का फीडबैक लें कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए रॉन्ग है, और आप दूसरों से आप अपने ग्रुप में, अपने फैलोस में ऐसे सवालात कर सकते हैं। और मैं मुझे सही माजी में याद है कि माजी में मैं खुद इन चीज़ों के बारे में जज करता था। मैं अपने दोस्तों को कहता था, जब भी हमारा गेट टुगेदर होता था स्कूल फ्रेंड्स का या कॉलेज फ्रेंड्स का, तो वो दोस्त होते हैं जो आपके बारे में सबसे ज़्यादा जानते होते हैं। तो मैं उनको कहा करता था कि आप मुझे मेरी 3 अच्छी आदत बताएं और 3 बुरी आदत बताएं। मेरे बारे में आप बताएं कि आपने माजी में 10 साल स्कूल में मेरे साथ गुजारे, कौन से ऐसी 3 अच्छी आदत थी जो आपको इंस्पायर की, जिनसे आप मोटिवेट हुए, या कोई भी ऐसी कौन सी 3 बुरी आदत थी जिन्होंने आपकी ज़ात आपको किया कि यार शायद यहाँ अली गलत कर रहा है। और यकीन माने वो जो दोस्त होते हैं स्कूल लाइफ के, वही आपको सबसे बेहतर बता सकते हैं। सो अपने आप को जज करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है जो आप सेल्फ अवेयरनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कि दूसरों से फीडबैक लेना स्टार्ट करें। दूसरों से पूछें कि यार आपको क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूँ। ये इन सोसाइटी बड़ा स्ट्रेंज चीज़ लगती है कि कैसे आप किसी से पूछें, लेकिन आपका एक फ्रेंड सर्कल होता है, आपका एक कंफर्ट जोन होता है, उस कंफर्ट जोन में आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यकीनन जब आप अपने दोस्त के पास बैठेंगे, उससे पूछेंगे, और आपको वो बेहतर तरीके से जानता होगा, वो आपको बता सकता है कि आप में क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ दुरुस्त है, और किन चीज़ों पर, किन एरियाज ऑफ लाइफ को आप बेहतर कर सकते हैं। सो जब आप बैठेंगे अपने दोस्तों के पास, वो आपको बताएंगे और आपको पता चलेगा कि मेरी पर्सनालिटी क्या है। पहली चीज़ हमारे पास क्या आई कि हमें डायरी लिखनी चाहिए रोज़ की रूटीन में। हम वो चीज़ हमें बताएगी कि हमारी ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ बेहतर है। और दूसरी चीज़ है कि दूसरों से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी के लिए, आम हर इंसान के लिए, कि वो खुद जहन साजी करे, वो इस चीज़ के ख्यालात को प्लान्ड करे, लाइन अप करे, एक रोड मैप रेडी करे कि मैंने किन चीज़ों को किस तरह से ज़िंदगी में लेके चलना है। ये तो इस्लाम में भी है कि जब आप इशा के बाद कुछ वक्त के लिए बैठें तो ज़रूर अपने दिन के बारे में सोचें कि क्या बेहतर आपने किया, किन चीज़ों में आप और ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं। आप रोज़ाना अगर चंद मिनट ही आप अपने स्लीपिंग बेड पे जब सोने जाते हैं, लेटते हैं, और आजकल तो कुछ ऐसी रूटीन ऑफ लाइफ है हमारी कि हम मोबाइल से या डिजिटल गैजेट से ऐसे जुड़े हुए हैं कि हम सोने से पहले भी 3-4 घंटे हम इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते रहते हैं, और हमारे ख्यालात सैचुरेटेड होते रहते हैं, हमारे ख्यालात बिखरे रहते हैं, हम उनको सम अप नहीं कर पाते हर शाम को, हम उन्हीं सैचुरेटेड ख्यालात के साथ, हम उन्हीं ख्यालात के साथ अचानक सो जाते हैं और पता ही नहीं चलता, सुबह एक बेमायनी दिन का आगाज़ कर देते हैं। सो जहन साजी बेहद ज़रूरी है रोज़ाना की नौयत पे। अगर आप सुबह के वक्त या शाम के वक्त, अगर शाम के वक्त भी है तो अपने स्लीपिंग बेड पे अपना मोबाइल एक साइड पे अगर आप रख के ये चीज़ सोचें कि आज मैंने इस दिन में क्या खोया, क्या पाया, क्या मेरे ख्वाब थे उनके लिए कितनी मैंने स्ट्रगल की, या आज के दिन के लिए अपने ख्वाब के बारे में क्या मैं एफर्ट पुट कर सका, क्या बेहतर, क्या अच्छा, क्या बुरा मैंने किया, क्या खोया, क्या पाया, इस चीज़ को पहचानना बेहद ज़रूरी है। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप इस चीज़ की मुहिम का करें आगाज़, कि अगर आप मौजूद हों दिन के वक्त में, अगर आप ये करना चाहें तो बेहतरीन एक वक्त है कि सुबह फजर की नमाज के बाद अगर आप बैठें, सूरज की किरणें आप सुबह की देखें, और सुबह का वो समा जो होता है वो तो एक नई किरण उजागर करता है आपकी ज़ात में, आपको बताता है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है। अगर आप मेरे से मशवरा लें तो मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी 9th-10th की लाइफ में गांव में सुबह, क्योंकि मुझे मेरा थोड़ा मिलिट्री की तरफ ज़्यादा डिक्लाइंड था, मैं हमेशा से चाहता था कि मैंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना है, सो उसी हवाले से मैं हमेशा रेडी रहता था उन चीज़ों के बारे में। सो मैं सुबह उठ के जॉगिंग पे जाता था डेली। सो मैंने वो जो एक नहर के किनारे बैठ के सुबह की किरण देखनी, और सुबह सामने हमारे सरगोधा में माल्टे के बागात होते हैं, वहाँ पे माल्टे के बागात होने, और एक स्पेसिफिक माल्टे की खुशबू होती है, वो खुशबू आ रही होनी, वहाँ बैठ के जो ख्वाब सोचे थे, यकीन माने आज भी मैं अल्लाह की ज़ात का निहायत शुक्र गुजार हूँ कि उसकी ज़ात ने उन ख्वाबों पर पुख्तगी उस वक्त में दी, उस वक्त में वो पुख्तगी मिली तो आज मैं ज़िंदगी में आगे उन ख्वाबों को लेके चल रहा हूँ। सो सुबह का वक्त मैं समझता हूँ सबसे अच्छा वक्त है कि आप माइंडफुलनेस कर सकें, आप जहन साजी कर सकें, आप इस चीज़ का मरकबा पैदा कर सकें कि आपको अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। उसी के साथ साथ अगर हम अपने इस मौजू की टेक्निकल चीज़ों की तरफ चलें या हम अपने इस मौजू की आप रिसर्च की तरफ चलें, तो हमारे पास डिफरेंट मेडिकल टेस्ट भी हैं, हम उन्हीं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे पास असेसमेंट्स भी हैं, कुछ ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं अपनी ज़ात को। आप सिंपली एक ऑनलाइन फॉर्म होगा, उसे फिल करें, आप सबमिट करेंगे, लास्ट में आपको रिजल्ट आ जाएगा। सो इसकी डिटेल्स हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे एक छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद, और उसके बाद हम अपनी अमली ज़िंदगी के बारे में भी बात करेंगे, खुद आगाही हमें कैसे अमली ज़िंदगी में हमारी मदद करती है। तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is 92.6.
2: वेलकम बैक टू FM 92.6 यूसीपी की दुनिया और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद नौ, जिसमें हम बात कर रहे थे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, खुद आगाही के बारे में। तो अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें कि ऐसे कौन से मेडिकल स्नैरियोज होते हैं जिनमें हम अपनी साथ के बारे में जान सकते हैं, तो बेसिकली MBTI एक टेस्ट नेम है। अगर हम इस टेस्ट को करवाएं तो हमें पता चल सकता है, साइकोलॉजिस्ट हमें बता सकते हैं कि क्या परसेप्शन है आपकी,

कि मेरी पेंटिंग से क्या चीज़ परसीव हो रही है, तो आपको वो कंप्लीट परसेप्शन दे सकता है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि खुद आगाही की अमली ज़िंदगी में क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी के बारे में। अगर हम प्रैक्टिकली लेके चलते हैं चीज़ों को, हम प्रैक्टिकल करते हैं ज़िंदगी को, तो क्यों खुद आगाही ज़रूरी है। देखें, अगर आप खुद के बारे में अवेयर्ड हैं तो सबसे पहले आपको एक बड़ी पावर मिल जाएगी कि आपके बेहतर ताल्लुकात बनना शुरू हो जाते हैं। मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी इस बारे में बात की थी कि एक लीडर और एक आम इंसान में क्या फ़र्क होता है। सिर्फ ख्यालात का फ़र्क होता है, सिर्फ जज्बात का फ़र्क होता है, सिर्फ उसके इनिशिएटिव पावर का फ़र्क होता है। अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, शायद आप वक्त लें उसको सोचने में, लेकिन एक लीडर उसको फौरन अवेल करेगा। एक लीडर हमेशा प्लान्ड होता है, एक लीडर हमेशा मिशन ओरिएंटेड होता है। सो जो खुद की आगाही है, यकीनन यह आपको लीडरशिप की तरफ भी लेके जाती है, आपको बताती है कि क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। सो अगर हम देखें कि खुद आगाही हमारे ताल्लुकात को कितना बेहतर करती है, तो आप यकीन मानें कि अगर आप अपनी ज़ात के बारे में श्योर हैं और आपको पता है कि ये बात इस मौके मुनासबत पे मैंने नहीं करनी, या ये बात इस मौके मुनासबत पे अगर मैंने कर दी तो उसका क्या असर होगा, अगर आप मौके मुनासबत को जज करना जानते हैं कि इस मौके मुनासबत पे मैंने ये बात की है और ये असर रखती है और ये नहीं असर रखती, तो ये चीज़ आपके ताल्लुकात को बेहद बेहतर कर सकती है। जब आपके बेहतर ताल्लुकात होंगे, इनडायरेक्टली आप लीडर हैं। एक लीडर हमेशा अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों में, अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तों में बेहतर तरीके से इम्पार्ट होता है। वो बेहतर तरीके से जानता है कि मेरी ज़िंदगी के लिए ये चीज़ें बेहतर हैं और ये जज्बात, ये ख्यालात, ये एहसास मैंने इन तबके फ़िक्र लोगों तक रखने हैं या नहीं रखने। सो वो अपनी ज़ात के बारे में बड़ा अश्योर होता है। सो इसी हवाले से अगर हम देखें कि इसके बाद बेहतर ताल्लुकात के बाद हमें प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फ़ायदा है, तो हमें पता चलता है कि हम पेशा वाराना तरक्की हमारी ज़िंदगी में आती है, कि हम पेशा वाराना तरक्की हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है, या हमारा जो हमारे जो आप कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल योनरा है, प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल एरिया है, उसमें हम बड़े बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने शौक और अपनी ताकत के मुताबिक करियर चुनते हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपनी सोच, अपने ख्यालात, अपने जज्बात और अपने तबके फ़िक्र के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को परसीव करते हैं। जब भी आप अपने करियर को चूज़ करने जा रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी को चूज़ करने जा रहे होते हैं, तो अगर आप अपनी ज़ात के बारे में अश्योर हैं, आपको पता है कि मैं ये चीज़ें करूँगा तो उसका ये असर होगा, मेरे मूड्स इन बातों पे स्विंग्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी ज़ात के बारे में इस चीज़ पे अश्योर अगर 9th-10th में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं था कि मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, मैं अच्छी बातचीत, अच्छी गुफ्तगू कर लेता हूँ, तो क्या मैं मीडिया को ज्वाइन करता? बिल्कुल नहीं करता। मैं खुद के बारे में अवेयर्ड था तो मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। इसी तरह अगर आप खुद के बारे में सेकेंड ईयर में अवेयर्ड हैं कि कौन सा प्रोफेशन ऑफ लाइफ आपको बेहतर लगता है, तो आप बिल्कुल यकीनन आप एक अच्छी डिग्री को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने शौक के मुताबिक अपनी डिग्री को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ ही आप अपनी ज़ात के बारे में श्योर नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपने ज़िंदगी में करना क्या है, तो आप कभी भी अपनी सोच के मुताबिक, अपने जज्बात के मुताबिक, अपने ख्यालात के मुताबिक अपनी डिग्री को कभी परस्यू नहीं कर सकते। सो थिंग इज़ दैट कि अपनी ज़ात को पहचानना, अपनी ज़ात को जानना बेहद ज़रूरी है। सो इसी हवाले से अगर हम आगे बात करते चलें कि हमारे पास क्या और पावर आती हैं प्रैक्टिकली जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस से, वो है जी हौसला मंदी। वो एक वाहिद चीज़ है जिसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपको आता है जब आप एक जगह पे खड़े होकर एक बात करते हैं, आप अपनी ज़ात के बारे में श्योर होते हैं, तो आप उस बात को ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। अगर मैं आपके सामने आके बैठ के आपसे इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अपने सामीन से इन तमाम चीज़ों पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ के बारे में अवेयर्ड हूँ कि मैंने इसके बारे में तैयारी की हुई है,
میں نے اس موضوع کے بارے میں تیاری کی ہوئی ہے. تو اگر اب میں خود اس چیز کے بارے میں شور تھا کہ میری تیاری

है या नहीं है, अगर मैं नहीं है पे जाता तो शायद ये मेरे पास कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या जिसको आप कह सकते हैं कि आपके पास हौसला मंदी की पावर ना होती। हौसला मंदी की पावर कैसे मेरे पास आई कि मैं अपनी ज़ात के बारे में आगाही थी मेरे पास, मैं अशोर था कि हाँ मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ इस मौजू पर, मेरे पास ये पावर है। उसी के साथ साथ अगर हम अरस्तु के एक कॉल के बारे में बात करें कि अरस्तु ने क्या खूब कहा था सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, कि सेल्फ अवेयरनेस कैसे हमें मदद करती है हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, तो अरस्तु ने खूब कहा था, अरस्तु ने कहा था कि अपने आप को जानना ही सच्ची हिकमत का आगाज़ है। अपनी ज़ात को अगर आप पहचान लेते हैं तो वही एक हकीकत हिकमत है, उसी से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। और इस्लाम भी हमें कहता है, इस्लाम हमारे से मैदान महशर में जो सबसे बड़ा सवाल होना है, मैं माजी के कुछ प्रोग्राम में भी इस लाइन को डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे से अल्लाह की ज़ात ने शऊर का सवाल करना है, जो सबसे बड़ा सवाल आप समझें, तो शऊर का सवाल, अपनी ज़ात का शऊर हासिल करें, अपनी ज़ात का शऊर हासिल करें, अपने बारे में इस चीज़ का शऊर हासिल करें कि क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं हैं। तो आपने अपने आप को अगर पहचान लिया तो वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। और एक शेर के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा और एक पैगाम देना चाहूँगा अपने तमाम सामेईन को कि ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले कर चलें। आपकी ज़ात सिर्फ एक कॉन्ट्रीब्यूशन आपके करियर में नहीं पुट कर रही, आपके माशरे में पुट कर रही है। आपकी ज़ात आपके माशरे के लिए असर रखती है, आपकी ज़ात आपके लिए असर रखती है, और साथ ही साथ आपकी ज़ात इस चीज़ का असर रखती है कि आपने माशरे को कैसे बेहतर करना है। सो हमेशा अपनी ज़ात के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, अपने वालिदैन के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, अपनी माशरे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा सोचें, अच्छा करें। जब भी आपको ज़िंदगी में मौका मिले तो अवामुन्नास की खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें, लोगों की भलाई का सोचें, और जब माशरे में आप निकलें तो कुछ ऐसा सोचें कि पता लगे कि ये एक पढ़ा लिखा शहरी है। आप पौधे लगाएं, पता चले लोगों को कि ये इंसान मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है, ये सोच रहा है इस बारे में कि आने वाला वक्त कैसे होगा, आने वाला वक्त इसके लिए कैसे बेहतर हो सकता है, आने वाला वक्त कैसे इस इंसान के लिए बेहतरी की तरफ इसको लेके जा सकता है। अपने जज्बात को समझना, अपने ख्यालात को समझना और अपने एहसासात को समझना सबसे बड़ी खुद आगाही है, और ये ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपने ज़िंदगी को कैसे परस्यू करना है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा एक शेर के साथ कि नज़र पड़ी जो दिल पे तो राज खुला ये राज का, नज़र पड़ी जो दिल पे तो राज खुला ये राज का, कि असल जंग है अंदर की, बाहर तो सब फसाना है। इसी के साथ अपने मेहमान अली हसन को दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया. UCP की दुनिया FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: अगर कभी मेरी याद आए।
1: लाहौर's नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया UCP की

0: नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, आपके अपने प्रोग्राम जुगनू के साथ हाजिर हैं मोहम्मद हमादुर रहमान। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम वॉलंटियर्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस का तारुफ लेकर हाजिर होते हैं, और इसके अलावा हम मुख्तलिफ समाजी मौजूदात पर भी गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुंदस फाउंडेशन से जनाब मोहम्मद फैसल हमीद साहब, जो कि सीनियर मैनेजर RM&CP हैं। सबसे पहले सर आपको वेलकम कहेंगे शो में।
3: वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा UCP का और हमादुर रहमान साहब आपका कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहाँ पे मैं सुंदस फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर सकूं और सुंदस फाउंडेशन के बारे में आगाही दे सकूं कि सुंदस फाउंडेशन क्या करती है और कब से एस्टेब्लिश हुई है। सुंदस फाउंडेशन 1998 से रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, और इसका पहला सेंटर गुजरांवाला में एस्टेब्लिश किया गया था। यासीन खान साहब इसके प्रेसिडेंट है, जिन्होंने ये रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जिन्होंने ये स्टार्टअप लिया था, और इसके बाद ये ग्रेजुअली इन्होंने ग्रो किया और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 12 सेंटर्स हैं सुंदस फाउंडेशन के। और इनका मिशन यह है कि पूरे पाकिस्तान में जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मुहैया किया जाए। थैलेसीमिया की आपको पता है कि ये जेनेटिक डिजीज है, जो कि जब दो कैरियर आपस में शादी करते हैं तो उनकी आने वाली जो नस्ल होती है वो थैलेसीमिया का शिकार होती है। तो इनकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट होती है दूसरों के ब्लड पे। जब तक इनको ब्लड मिलता है ये सस्टेन करते हैं लाइफ में, और एवरेज लाइफ पहले तो 14 से 20 ईयर थी, अब कुछ बढ़ के ट्रीटमेंट की जो मैनेजमेंट के इसकी 34 से 40 ईयर एज इनकी होती है, यानी कि इस तक है। और इसके साथ हेमोफीलिया पेशेंट्स भी होते हैं, थैलेसीमिया पेशेंट्स का, सॉरी मैं आपको पहले बता दूं, ये रेड सेल्स होते हैं जो उनकी कमी होती है, बॉडी इनकी डिवेलप नहीं करती तो वो उनको जरूरत होती है। और जो वाइट सेल्स होते हैं हेमोफीलिक पेशेंट्स के, अगर इनकी बॉडी में कहीं पे कोई चोट लग जाए या ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो उनको फैक्टर्स लगाए जाते हैं, वाइट सेल्स लगाए जाते हैं उसको ब्लीडिंग रोकने के लिए। तो जब तक वो ब्लीडिंग नहीं रुकती तो उनको वाइट सेल्स लगते रहते हैं। सम टाइम ये एक बैग से काम चल जाते हैं, सम टाइम 2-3-4 बैग, जब तक ब्लीडिंग नहीं रुकेगी उनको वाइट सेल्स लगते रहेंगे। और ये मैं ये समझता हूँ कि थैलेसीमिया से भी मेजरेबल कंडीशन जो है हेमोफीलिक पेशेंट्स की होती है।
2: That's really horrible to know जी के इस तरह से सिचुएशन दोनों बीमारियों में होती है, लेकिन मेरे ख्याल पाकिस्तान में हीमोफीलिया के पेशेंट्स की जो प्रिवेलेंस है वो थोड़ी सी कम है, बल्कि खासी कम है।
3: जी बिल्कुल, असल में अवेयरनेस नहीं इसकी ना, जो रजिस्टर्ड पेशेंट है, अब सुंदस फाउंडेशन के पास जो रजिस्टर्ड पेशेंट है वो 7000 के करीब है, पूरे पाकिस्तान में 12 सेंटर्स हैं उसी की, तो बाकी अवेयरनेस ना होने की वजह इसकी रजिस्टर्ड तो मेरे ख्याल में 1,00,000 के करीब पेशेंट्स की जो नोन है, बाकी अननोन पेशेंट्स कितने हैं, जब तक इसकी अवेयरनेस नहीं होगी, लोग टेस्ट वेस्ट नहीं करवाएंगे तो उस वक्त तक इसका कोई यानी कि पता नहीं चल सकता।
2: हाँ जी, उसमें एक ही भी सिनेरियो है ना कि थैलेसीमिया का तो फिर भी पता चल जाता है बचपन में ही, क्योंकि है तो जेनेटिक डिजीज दोनों ही
3: जी,
2: थैलेसीमिया का शुरू से आइडिया हो जाता है, और हीमोफीलिया का तब पता चलेगा जब खुदा ना खास्ता कोई चोट लगेगी, ब्लीडिंग होगी और वो नहीं रुकेगी तो पता चलेगा।
3: जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब उनको कोई चोट लगती है सम टाइम ये होता है कि बैठे बैठे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर से, वो इंटरनल रहती है, बाहर ब्लीडिंग नहीं होती तो स्वेलिंग शुरू हो जाती है उनके यानी कि जॉइंट्स में या कहीं, तो वो भी एक यानी कि अच्छा। इसके अलावा ये जो खाना खाते वक्त बच्चों को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो वो भी जब तक वो थैले उसमें हेमोफीलिया के वाइट सेल्स नहीं लगेंगे, तो इसके लिए जो हमने ये किया हुआ है कि हमने वेदे ने अपनी जो प्रीमिसेस है वहाँ पे इनको डेंटिस्ट्री की सहूलत भी दी हुई है, क्योंकि ये इनको टेस्ट करवाने ऑब्वियसली बाहर जाना पड़ता था, फिर फिजियोथेरापी भी हम वहीं पर देते हैं ये सारे, और डायग्नोस्टिक भी हम चेक करें यानी कि उनकी सारी जो लैब की टेस्टिंग, ब्लड की टेस्टिंग वगैरह होती है वो हम अब अंडर वन रूफ थैले सुंदस फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है।
2: राइट जी, हम बात कर रहे हैं जनाब फैसल हमीद साहब से, जो कि सीनियर मैनेजर हैं RM&CP के, सुंदस फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं। इस वक्त हुआ है एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं जनाब मोहम्मद फैसल हमीद साहब से, जो कि सीनियर मैनेजर हैं RM&CP के विद सुंदर फाउंडेशन। तो सर, हम बात कर रहे थे कि आपको मुख्तलिफ तरह से सपोर्ट की जरूरत पड़ती रहती है पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। डोनर्स के अलावा, जो ब्लड डोनर्स हैं उनके अलावा डोनर्स की जरूरत भी तो पड़ती होगी ना, क्योंकि जरा आप इतना फाइनेंशियल बर्डन खुद से तो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते। तो आप किस तरह से फंड रेज करते हैं, और आपके डोनर्स जो हैं वो क्या नेशनल लेवल पे ही हैं या इंटरनेशनली भी आपको सपोर्ट मिलती है?
1: जी बिल्कुल, इस पे जहर ब्लड के साथ साथ और भी जो एलिमेंट्स होते हैं जिसके लिए पेशेंट को जरूरत होती है, जैसे उनकी मेडिकेशन है, उनकी लैब टेस्टिंग है, उसके लिए जहर फंड्स की जरूरत होती है। और बहुत सारे ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जो हम इसमें सपोर्ट करते हैं, इंडिविजुअल्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुंदर फाउंडेशन अब तो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करने लगी है, USA में भी रजिस्टर्ड हो गई है और इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो ये तो एक जहर पेशेंट पे मेरे ख्याल अमूमन 55,000 के करीब पेशेंट पे खर्चा आता है, ये जिसमें बैग की प्राइस है, मेडिसिन की है, लैब टेस्ट की प्राइसेज है। अच्छा, इसमें वो इसके अलावा हम जो बच्चे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके साथ उनकी जहर गार्डियंस भी आ रही होती हैं और दूसरे बहन भाई भी होते हैं छोटे, तो उनको भी सुंदर फाउंडेशन लंच फ्री प्रोवाइड करती है। क्योंकि वो जहर एक अगर पेशेंट आता है तो उसको उसका पूरा दिन लग जाता है ट्रांसफ्यूजन में। पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है, उसमें 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, फिर उसके बाद उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 2 से 4 घंटे लग जाते हैं, तो ऑलमोस्ट पूरा दिन लग जाता है। तो उस दौरान जहर उनको फीड भी करना होता है, तो फिर सुंदर फाउंडेशन अपने जो सपोर्टर्स हैं, अपने मुखलिस दोस्त हैं, उनके तआवुन से हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मील भी देती है।
0: That's great जी, माशाल्लाह। और डेफिनेटली ये सारे सपोर्टर्स ही हैं जिनकी बदौलत आप जैसे इदारे माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और जहाँ जो जरूरतमंद लोग हैं उनके जहाँ हो सकता है, जिस तरह हो सकता है, उनकी इमदाद करते हैं। मैं ऐसे चाहूंगा कि आप हमारी यूथ को भी कोई पैगाम देना चाहें तो जरूर दीजिए।
1: अच्छा, हमारी जो यूथ है जहर फ्यूचर की भागदौड़ इन्होंने ही संभालनी है इस मुल्क की, तो वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के दस्तोबाजू जरूर बने। खासकर थैलेसीमिया जैसे जो मौजी मर्ज है, इससे छुटकारे का एक ही हल है कि आप अवेयर जितनी ज्यादा हमारी यूथ फैला सके वो फैला सकती है, अपनी फैमिली से स्टार्ट ले सकती है, किसी अपने मोहल्ले में दे सकती है, और इसमें एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च कर सकती है। क्योंकि जब तक यूथ नहीं होगी हमारे साथ, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, और यूथ हमारी दस्तोबाजू बनेगी तो इंशाल्लाह इस मौजी मर्ज से हम छुटकारा पा लेंगे।
0: बिल्कुल जी, मैं 100% एग्री करता हूँ आपसे कि हमारी यूथ के बगैर इस मुल्क का कोई भी एस्पेक्ट आप देख लें उसमें तरक्की तकरीबन नामुमकिन है। कि माशाल्लाह हमारी 60% प्लस पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, सो हमें उनके पोटेंशियल को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए।
1: जी बिल्कुल,
0: पाकिस्तान वैसे भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आता है और डेवलपिंग कंट्री है, तो जब तक हम इस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं करेंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो हमारा मुल्क तरक्की शायद ना कर पाए।
1: मेरी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं, मैंने पूरे पाकिस्तान में मैं ट्रैवल भी करता रहता हूँ सोशल वर्क के हवाले से, डिफरेंट लोगों से

0: मेरे मीटअप होते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी यूथ बहुत पॉजिटिव है, मोर देन जो पिछला कुछ एरे हमने आयरा देखा एरिया हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी जो यूथ है जो है पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जाएगी और इन्हीं के तामों से जो डिफरेंट ऐसी मोहलिक अमराज हैं उससे भी हम छुटकारा पा लेंगे
1: इंशाल्लाह जी। हम होपफुली हर तरह के मोहल्ले के अमराज से छुटकारा पा लेंगे अगर हमारी यूथ इसी तरह इंशाल्लाह पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेकर चलती रही और तरक्की करती रही और मुल्क को भी आगे लेकर बढ़ती रही। तो बहुत शुक्रिया आपका से तशरीफ लाने का और आपने बड़े अच्छे से बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की सुंदर फाउंडेशन के बारे में और इन मसाइल के बारे में जो ये पेशेंट फेस करते हैं जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया आपको तशरीफ लाने का।
0: मैं एक दफ़ा फिर UCP की पूरी टीम और हमादुर रहमान साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया सुंदर फाउंडेशन को प्रेजेंट करने के लिए, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया
1: सर। और इस शेर के साथ इख्तिताम करेंगे आज के प्रोग्राम का, करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। बहुत शुक्रिया, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया और आपके पास हाजिर होंगे अगले मंगल के रोज 3:30 बजे। अल्लाह हाफिज।

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: लिसन, लर्न, डिस्कवर विद रेडियो स्टेशन एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।

www.musicfeed.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: शुरू की थी और उनको हम कंटिन्यू करेंगे। और अभी हाल ही में हमें एक और शॉर्ट कोर्स नज़र आ रहा है, विच इज़ डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन भी हम समर में अपने बच्चों को जो BS डेटा साइंस वाले तो पढ़ेंगे, वो तो जब ऑफर होगा उस वक्त पढ़ेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो करंट सेमेस्टर में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ये डेटा विजुअलाइजेशन की थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि इनके पास भी एक स्किल आ जाए और ये भी टीचिंग के अलावा भी किसी और जगह भी ये जा सके।
1: मिस सबा नईम, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये होगा, क्या मुझे ये बताइए कि आपने UCP के माहौल को एज अ होल कैसे पाया?
2: सर, UCP इज़ नाउ लाइक अ सेकेंड होम टू मी, और यहाँ पे एक बहुत ही अपनायत का एहसास होता है, और इट्स और दूसरी बात यह कि इट्स अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट जिसमें हर चीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, लाइक अ सेकेंड होम। जैसे मैंने बताया कि 8 साल हो गए हैं, तो
1: दैट्स वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव फीडबैक। नॉर्मली जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले लोग होते हैं अपने माहौल से इस तरह मुतमईन और शादा नहीं होते जिस तरह आपने इजहार किया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जितना उस्ताद कलबी तौर पे और जहनी तौर पे आसूदा होगा, मुतमईन होगा, उतना ही बेहतर डिलीवर कर सकेगा। तो डॉक्टर सिद्दीकी साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, फिर हम आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। वही सवाल मैं बाद में मिस सबा नईम से भी करूँगा। वो सवाल ये है कि आप आने वाले तलबा को जो कि इरादा रखते हैं UCP में आने का, क्या पैगाम देना चाहेंगे?
0: पैगाम तो आजकल स्टूडेंट्स का थोड़ी सी साइकी भी बन गई है, वो समझते हैं कि जी उस एरिया में जाया जाए जहाँ ज़्यादा पैसा हो और शॉर्टकट हो। मैंने FIT में पढ़ाया और वहाँ मैंने ये देखा कि तीसरे चौथे सेमेस्टर से ही वो कोई कॉल सेंटर में जा रहा है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस में जा रहा है। तो मैं उनसे ये कहता था कि आपने फिर ये 8 सेमेस्टर की डिग्री क्यों ज्वाइन की? अगर आपने यही शॉर्टकट लेना था तो वैसे ही चले जाते, और इतनी मुश्किल में आप डाल रहे हैं। और अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फिर आप बेशक जॉब करें, और जिनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है वो भी देखा था कि जॉब करें। नतीजा ये है कि डिग्री बहुत ज़्यादा मुतासर होती है उससे, और मैथमेटिक्स की तरफ भी रुझान और कम हो जाता है उनका। तो आने वाले बच्चों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अपने में पोटेंशियल देखें कि आपका पोटेंशियल क्या है। ये ना देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है, पैसा कहाँ से मिलेगा। अगर आपका जहाँ भी आपका पोटेंशियल अच्छा होगा वहीं आप एक्सेल कर सकते हैं, अपने आप को मनवा सकते हैं। तो अपने आप को ढूंढें, अपने आप को एक्सप्लोर करें। ये बहुत कमी है हमारे स्टूडेंट्स में, उन्हें यही नहीं पता कि हमें अल्लाह ने क्या खूबी दी है। सारी खूबियाँ हर इंसान में नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई खूबी हर इंसान में अल्लाह ने ज़रूर दी होती है, बस उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जो ही एक्सप्लोर कर लेंगे तो आप फिर खुश दिली के साथ, और इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी, 8 सेमेस्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, और सेमेस्टर में सर को जाने की फुर्सत नहीं मिलती, और आप गमी खुशी को भी आपको कुर्बान करना पड़ जाता है। तो ये तो इस जज्बे के साथ आए, और हमारे टीचर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी जा के मिलता रहता हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है। हम पूरी कोशिश करें स्टूडेंट्स को कि अगर वो अब आ ही गए हैं, डिसीजन कर ही लिया है, तो अब इसको निभाएं। कायदा ने भी ये कहा था कि या तो जब डिसीजन कर लें तो फिर उस पर कायम हो जाएं,
1: चट्टान की तरह जी कायम डट जाएं। मिस सबा नईम, मैं आपसे पूछूंगा कि आइंदा आने वाले सेमेस्टर में आपके डिपार्टमेंट में क्या ऐसे प्लान्स हैं जो कि ना सिर्फ फैकल्टी को उनके जो है नशोनुमा को बढ़ाएं, बल्कि जो मुस्तकबिल में जहां आपके बच्चों ने जाना है, एम्प्लॉयज़ के साथ, इंडस्ट्री के साथ कैसे आप डोवटेल करेंगे? कौन से सेमिनार्स हैं, कौन से कॉन्फ्रेंसेस हैं, कौन से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जो आपके पास है? ये सवाल बाद में मैं शायद सिद्दीकी साहब से भी करूँगा। मिस सबा नईम
2: जी, सर हमारे यहाँ पे UCP का एक ये एनवायरनमेंट है कि कोई ना कोई एक्टिविटी जो है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी हमेशा मौजूद रहती है। और अगर पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हवाले से देखा जाए तो वी कंडक्ट डिफरेंट वर्कशॉप्स, और इसके अलावा हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे पोस्टर कॉम्पिटिशन है। एंड रिसेंटली आई ऑल्सो लाइक टू ऐड कि हमारा हर एनुअली एक साइंस एंड इंजीनियरिंग फेस्टिवल भी होता है जिसमें हम साइंसेस को प्रमोट करते हैं, एंड बीन अ मैथमेटिक्स टीचर तो हम मैथ्स के डिपार्टमेंट मैथ्स की एक्टिविटीज़ करवाते हैं. सो उसमें हम डिफरेंट इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं इन विच वी इंस्टिल द इंटरेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स टू द यंग स्टूडेंट्स, के मैथ्स जो है

0: क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इट्स नोन एज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस, और अभी तक उसकी रेलिवेंस ख़त्म नहीं हो सकती. चाहे वो आप डिफरेंट प्रोग्राम्स अब आईटी के आ रहे हैं, लेकिन मैथ्स वालों की जो ज़रूरत है वो कभी ख़त्म नहीं होगी. और शायद यही वजह है कि वी हैव बीन वी आर द लाइक बिगेस्ट फैकल्टी अक्रॉस यूसीपी, और हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को भी कैटर कर रहे हैं. सो इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, हमेशा पूरे साल में कुछ ना कुछ ऐसे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं. समर्स में हमारी वर्कशॉप टीचिंग की भी होती हैं, एंड देन रिसर्च के हवाले से भी होती हैं. सो यस,
1: शायद सिद्दीकी साहब, मुख्तसरन तकरीबन एक मिनट आपके पास है, आप बताइए कि आपके पास क्या प्लान्स हैं आइंदा आने वाले सेमेस्टर में इसातज़ा के लिए और स्टूडेंट्स को मज़ीद एक्सपोज करने के लिए बाहर की दुनिया से.
2: जी, एक तो मैंने पहले ही स्टूडेंट्स के हवाले से बता दिया कि हमारा प्लान है समर में हम डेटा विजुअलाइजेशन ऑफर करने जा रहे हैं. उसके अलावा हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आउटसाइड यूसीपी, मैंने ये आइडिया दिया था प्रोफेसर साहब को, तो वो कह रहे हैं कम अप विद योर फुल प्लान. तो हम ये चाह रहे हैं कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाया जाए. मैथमेटिक्स एक बहुत टफ सब्जेक्ट समझा जाता है, और हमारे एक पुराने डीन थे, वो ये कहते थे कि रिग्रेस मैथमेटिक्स आप पढ़ाते हैं, इसको लाइट बनाएं. तो असल में यही हमारी कमी है कि हम इसको सही तरह से बता नहीं पा रहे होते. हम उसको लाइट मोड में अगर बताएंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा बच्चा. और यहाँ फिर मैथमेटिक्स की जहाँ इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, बार बार हम कहते हैं जी कंप्यूटर साइंस ने ये तरक्की कर ली. मैं कहता हूँ कि उसके पीछे सारा मैथमेटिक्स है. मैथमेटिक्स पुश करता है टेक्नोलॉजी को, और टेक्नोलॉजी पुश करती है मैथमेटिक्स को. आज मैंने जियोजेब्रा सीखा हुआ है, तो आई कैन डेवलप न्यू मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन जियोजेब्रा. वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. अभी जो मैं एक छोटी सी मिसाल के लिए थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा, वो ये है, जब सीटी स्कैन आप सुनते हैं, ये बहुत पहले 89 में ये प्रॉब्लम मैथमेटिशियन को दिया गया था कि अगर किसी पेशेंट के में कोई ट्यूमर है और हमने उसका वॉल्यूम निकालना है, हमारे पास सिर्फ उसके क्रॉस सेक्शंस पे डाटा पता है. तो वो मैथमेटिक्स तो डेवलप कर लिया गया, टेक्नोलॉजी पीछे रह गई और उसको दिखाया नहीं जा सका था. तो वही सीटी स्कैन आज वो सॉफ्टवेयर की शक्ल में, और जाहिर है कि टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई, तो इसकी जो स्टार्ट था, उसका जो वॉल्यूम निकालने का तरीका था, उसका पेपर आज भी डंडी यूनिवर्सिटी का मौजूद है, वो मैथमेटिशियन थे. थैंक यू वेरी मच.
1: डॉक्टर सिद्दीकी साहब, एक मेरा ज़ाती सवाल तफन्नुन तबा के लिए, वो ये है कि फिज़िक्स वाले न्यूटन को अपना कहते हैं, मैथमेटिक्स वाले भी न्यूटन को अपना कहते हैं. आप आज इस कज़िये का फैसला कर दीजिए कि बीइंग अ फिजिसिस्ट मैं न्यूटन को अपना कहूँ, या मैथमेटिशियन बीइंग अ मैथमेटिशियन आप न्यूटन को अपने डोमेन में कंसिडर करते हैं.
2: ये मैं ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स एक ही बाप की औलाद हैं, और वो बाप है साइंस.
0: आप भी एक्चुअली हमारे ही हैं.
2: तो ये चूंकि एरिया इतना बड़ा हो गया, आपको आपको बहुत सारे मैथमेटिशियन फिलोसोफर मिलेंगे.
1: बिल्कुल ठीक.
2: वो फिलोसोफर थे और वो मैथमेटिशियन भी थे.
1: ऐसे, ऐसे, ऐसे,
2: तो ये एक ही है, हम सब एक ही हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं.
1: ऐसे ही जी, ऐसे सारी ये एक दूसरे की सपोर्टिव साइंसेज हैं. सारे के सारे एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के, हाथ से हाथ मिला के चलते हैं. सो सामी, आज हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है. यकीनन आपको पसंद आएगा. हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा. अगले हफ्ते इसी वक्त इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे. अपना बहुत ख्याल रखिए. पाकिस्तान
3: जिंदाबाद.

Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6, UCP की दुनिया।

इसके बाद नूरजहां ने 1960 से 1970 तक के अश्रे में पंजाबी फिल्मों के लिए गाने गाए जो सुपरहिट हुए, और इनमें से बहुत से गीतों का शुमार सदाबहार गीतों में होने लगा।

नूरजहां ने 1000 फिल्मों के लिए गीत गाए, जिनमें से ज्यादातर मकबूले आम हुए। नसीब सदी से ज्यादा अरसा तक मौसीकी की सल्तनत और करोड़ों सामईन के दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करने वाली मलका तरन्नुम नूरजहां की शख्सियत के हवाले से एशियाई लेजेंड दिलीप कुमार की अहलिया और माजी की मारूफ अदाकारा सायरा बानो का कहना है, मलका तरन्नुम नूरजहां ने प्लेबैक सिंगिंग में जो उसलूब अंदाज वजा किया वो फिल्मी मौसीकी का लाजमी जुज बन गया। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार अक्सर ये बात करते हुए मलका तरन्नुम का तस्करा करते हैं तो कहते हैं कि दुनिया में फिल्म और म्यूजिक रिकॉर्डिंग की इजादात को मुतारिफ हुए अभी थोड़ा अरसा हुआ था, इसलिए इस तकनीक को सीखने के लिए ना तो इंस्टीट्यूशन से और ना ही फनकारों की ट्रेनिंग का अहतमाम। हैरत अंगेज अमर ये था कि नूरजहां ने इस दौर की जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत हासिल किए बगैर जो काम किया वो आज भी अनोखा और मुनफरिद है।

मेरा माही चैन शरीरा, जिंदा है लाहौर, पाइंदा है लाहौर। ए पुत्र हटा दे नई विगदे, की लब दे फिरे बाजार कुड़े। मलका तरुण ने अपने मिली नख्मों से वतन की हिफाजत करती हुई गयूर कौम को पैगाम दिया, सियालकोट तू जिंदा रहेगा, तू जिंदा रहेगा मेरा सोहना शहर कसूर ने। रब दिया रखा, ये वो गीत थे जिन्होंने पाक अफवाज के हौसलों और जज्बों को बढ़ा दिया।

1986 में जब वो शुमाली अमेरिका के दौरे पर थी तो इन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टर्स ने एंजाइना की तकलीफ बताई, जिसके बाद इनकी सर्जरी की गई। सन 2000 में कराची में इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। यूं ये दिलकश आवाज 23 दिसंबर सन 2000 को अपनी महक यहीं छोड़कर हमसे हमेशा के लिए दूर हो गई।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
1: भूख चेहरे पे लिए चांद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे हो गया चर्ख सितमगर का कलेजा ठंडा मर गए प्यास से दरिया के किनारे बच्चे बच्चे उम्मीद की किरण और जिंदगी की नवीद होते हैं इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे और जगमगाती आंखों से ख्वाब नजर आते हैं इनकी हंसने की झनकार हमारे चेहरों पर मुस्कान और घरों में रौनक बिखेर देती है इनकी नन्ही नन्ही शरारतें आपके अंदर जीने की उमंग पैदा करती हैं इन्हीं की वजह से आपके घर में रौनक और जीने का हुस्न नजर आता है ये नन्हे तारे बाज औकात आपके लिए मशले राह और जिंदगी गुजारने का मकसद बन जाते हैं बच्चे तो रयाकारी से पाक होते हैं लेकिन बाज औकात हालात रहन सहन और तर्ज जिंदगी इनको अपने अपने रंग में रंगती चली जाती है
2: हम सुबह सुबह घर से आ जाते हैं तो इधर आके हम शहर पे काम करते हैं हमारे घर का किराया नहीं पूरा होता इसलिए किराया कैम किराया दे नहीं सकते इसका किराया भी 5,000 रुपये हम चलो काम करते हैं हमारी मम्मी कहती है 1,000 रुपये चले जाओ उधर काम कर लो अब मजदूर है वो भी नहीं कर सकते इसलिए हम कुछ करके हम साथ में मिल के जो होता है हम करके आमदनी चला लेते हैं जो हम काम कर देते हैं ऊपर से पकड़ने वाले आए थे जो पैसे होते हैं वो ले जाते हैं और हम जो सारे दिन की मेहनत होती है उन पर पानी पेट जाते हैं जो भी होते हम फिर भी छोड़ देते हैं हम कहते हैं अल्लाह का नाम है छोड़ दो हमें कोई जब गाड़ी साफ कर रहे होते हैं तो कोई 10 रुपए कोई 20 देते कोई देता नहीं जो अच्छे लोग होते हैं वो दे जाते कोई देते नहीं इसलिए हम अल्लाह का शुक्र है कभी घर का सरकट चल जाता है
1: और इसी तरह ये बच्चे नन्हे पौधे से तनावर दरख्त बनने के अमल से गुजरने लगते हैं जिंदगी की कश्मकश इन्हें फाइटर बना देती है दर दर की ठोकरें इनका मुकद्दर बन जाती हैं जिंदगी वक्त हालात और मजबूरियां कब इनके नन्हे नन्हे हाथों में खिलौनों की जगह अपने खानदान की जिम्मेदारियों का बोझ थमा देती हैं इन्हें पता ही नहीं चलता जिंदगी से लड़ते लड़ते ये बच्चे जिंदगी का कितना बड़ा सबक सीख जाते हैं ये इनके सिवा कोई नहीं बता सकता
3: मेरे बब्बू फोत हो गया मैं अकेला ही घर का खर्चा पानी चलाता हूँ और मैं 10 रुपये मैं गुब्बारे पे 1 कड़ा अपना खर्चा चलाता हूँ और मैं पीछे से 5 रुपये का गुब्बारा लाता हूँ और आगे आके मैं 10 रुपये का गुब्बारा बेच देता हूँ इस तरह मुझे रोज के 40-50 गुब्बारे मेरे बिक जाते हैं जिसमें फिर मुझे 250 रुपये मुनाफा हो जाता है और मैं ला के अपनी अम्मी को दे देता हूँ मेरी अम्मी भी लोगों के घर में काम करती हैं इस तरह हम दोनों माँ बेटे कमाई करते हैं और हमारे घर का खर्चा पानी चल जाता है
1: ये वो बच्चे हैं जो वक्त से पहले ही वक्त और हालात का हर रंग और मौसम देख लेते हैं हालात की नामसादत इन पर जिम्मेदारियों का वो बोझ डाल देती है जिसके लिए वो ज़हनी, जिस्मानी और फितरी तौर पर तैयार भी नहीं होते लेकिन खानदान चलाने वाले गुर्बत के थपेड़े इनके हाथों में खिलौनों के बजाय मेहनत मजदूरी के आलात थमा देते हैं और इन्हें अपने वालदैन का हाथ बटाने के लिए जालिम बेहिस और बेरहम माशरे के दलदल में हाथ पांव मारकर अपने और अपने खानदान के बका का सामान करना होता है
4: मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो उनकी टांग टूट गई अब वो मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे मैं इस दुकान पे आया तो उस्ताद जी से मैंने कहा कि मैंने आपके पास काम करना है तो मुझे पढ़ाई का शौक था तो उस्ताद जी ने मेरे से वादा किया कि वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे तो मैं इधर काम करना शुरू कर दिया अब छुट्टियाँ हुई हैं मैं बड़ी मेहनत से काम करता हूँ सुबह पहले शाम को सिर्फ स्कूल पढ़ने के बाद आता था अब मैं सुबह भी आ जाता हूँ और दिन सही मेहनत से काम करता हूँ आधे से ज़्यादा काम मैंने सीख लिया उस्ताद जी कहते हैं कि अब मैं जल्दी मैकेनिक बन जाऊँ
1: होना तो ये चाहिए कि माशरे ऐसे बच्चों के साथ हुस्न सलूक करे इनसे इनकी इस्तेतात और जिस्मानी ताकतों के मुताबिक काम ले मगर इनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए इन्हें काम के बोझ तले ऐसा दबा दिया जाता है कि वो 12-16 घंटे तक मुसलसल मुशक्कत करते हैं। पूरा काम लेने के बावजूद कलील मुआवजा दिया जाता है। सितम जरीफी ये है कि इन्हें इज्जत देना तो दरकिनार इनके साथ हकारत आमेज सलूक किया जाता है। इनके नाम की सूरत में इनके वालिदैन ने इन्हें जो शनाख्त दी होती है वो भी इनसे छीन ली जाती है। इन्हें इंतहाई हकारत से पुकारा जाता है। ओए छोटे, एक ऐसा ही लफ्ज है जो इनकी शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गया है। इन्हें इस नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारा भी नहीं जाता। इस नाम में इज्जत से कई ज्यादा तहकीर का पहलू पोशीदा है। क्या आपने कभी सोचा है जिन्हें आप ओए छोटे कहकर पुकारते हैं, क्या ये मुनासिब है? क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे को, जिसका नाम आपने इसकी पैदाइश के वक्त बड़े दुलार और प्यार से रखा था, उसे कोई धुतकारते हुए अल्फाज से पुकारे? नहीं ना, तो एक पल सोचिएगा जरूर कि इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये छोटे मेरे और आपके आसपास हर वक्त हर जगह मिल जाते हैं। कचरे की बोरियां उठाए, पॉलिश का सामान लिए, फ्रूट बेचते, सड़कों पर टोकरियां लिए, बाजारों में शॉपर उठाते, मोटर मैकेनिक्स के पास, पंक्चर लगाने वाले के पास, इन बच्चों ने एक पूरे खानदान को अपने कमजोर जिस्म, पुरअज़्म, हिम्मत और हौसले के पीछे पनाह दी होती है। ऐ छोटे की सदा लगाने से पहले बस एक लम्हा, एक लहज ये जहन में याद कर लें कि ये किसी घर के वाहिद बड़े हैं और बड़ों का एहतराम हमें सिखाया गया है। नाबालिग बच्चों का रोजी के हसूल के लिए काम करना चाइल्ड लेबर कहलाता है। बच्चों के काम करने की जो सबसे बड़ी वजह देखने में आई है वो गुर्बत है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में इन मजदूरी करने वाले बच्चों के वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को बाआसानी तालीम दिला सकें। बच्चों से इनकी बचपन की खुशियां छीन कर इनसे मुशक्कत वाला काम लेना इनकी जात के लिए जहनी, जिस्मानी, समाजी और इखलाकी तौर पर इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, इस उम्र में इन मासूम हाथों में भारी औजार और होटल के बर्तन थमा दिए जाते हैं।
5: मेरे पापा फौत हो गए हैं, मेरी मामा ने दूसरी शादी कर ली है और मैं होटल में काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शाम को 300 रुपया मिल जाता है। उनमें से मैं अपनी छोटी बहनों के लिए खाने की चीज़ें और दूध वगैरह लेके जाता हूँ, जिसे खाकर वो खुश होती हैं और मुझे भी खुशी महसूस होती है।
1: इन्हीं के बारे में किसी ने कहा है, अफलास की बस्ती में जाके देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। अफराते जर भी बच्चों को मजदूरी करने तक लाने की एक अहम वजह है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में बच्चों के या घरेलू अखराजात पूरे नहीं होते तो मजबूरन वालिदैन को बच्चों को काम करने पर भेजना पड़ता है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन हर साल 12 जून को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों को काम करने से रोकना है। कानून बनाने वाले महलों में बैठकर कानून वजा करते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि असल मसला चाइल्ड लेबर का नहीं बल्कि मुल्क में माशी सूरतेहाल का है, जिसमें करप्शन, रिश्वत और दिन ब दिन बढ़ते हुए टैक्सेस एक अहम मसला है।
6: दादा, वहाँ 1,30,00,000 अफराद खत्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इफलास की सूरत हाल है कि लोगों को खाने पीने की चीजें मुयसर नहीं है, तो उसमें फिर हमारा शुमार कतार कहाँ, अगर हमारा मुल्क तो वैसे ही कर्जों पे चलने वाला।
1: कौन सी ममता है जो अपने जिगर के टुकड़े को मजदूरी करने वाले औजार थमाए,
0: मगर पेट की भूख और माशरे का तल्ख रवैया इंसान को इस नहज पर ला खड़ा कर देता है कि वो ये सब करने पर मजबूर हो जाता है। एक इंसान होने के नाते हम इस बात के कैसे हामी हो सकते हैं कि फूल से मासूम बच्चों के हाथ काम करते हुए आबलों से भर जाएं? मगर किसी गरीब का गंदगी के ढेर से निवाला तलाश करना भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इत्तला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

WHO की हालिया तहकीकात के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन अफराद आँखों के मसाइल से दो चार हैं। लिहाजा आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाकर अपनी आँखों की हिफाजत कीजिए। अपनी आँखों को गर्दो गुबार और आलूदगी से बचाएं। कंप्यूटर पर काम करते हुए मुसलसल आँखें कंप्यूटर पर मरकूज ना रखें। आँखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। बच्चों को नोकीली चीजों से हरगिज न खेलने दें। मोबाइल के बेजा और मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करें और घर आते ही फौरन आँखों को ताज़ा और ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा खाने में मुतवाजन ग़िज़ा और विटामिन ए से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.